0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: वाली बतारा चपला रखी अस्खी कर लो वाली बतारा चपला रखी अस्खी कर लो कसर बोलना कसर बोलना मी पलार दर तशिंगले नवे माव जलल वाली कतारा तखंदले नवे माप जलल वली रतखंदले नवे परवर चिगारा कुली तल तल निश कुली कुली लरी दस्ता दुनिया बखुली नवे कदा कुली नवे माप जलल वली कता रतखंदले नवे ओ संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने या तुम्हें उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है पत्थरों क्यों मेरे सर पे बरसते क्यों हो पत्थरों क्यों मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने तुम्हें को मैंने तुम्हें को कभी अपना खुदा रखा है जिसने तूने मुझे दीवाना बना रखा है वली अब कार दी दुनिया बता नस्तर की वक्की वली अब कार दी दुनिया बता नस्तर की वक्की पमीना मीना पमीना मीना कदुखुलो ताकतले नवे माव जड़ल वली कता रातखंदले नवे
1: वाजिवा वाजिवा वाजिवा जबरदस्त डेर बेहतरीन
0: दाखवून मी नवाल होता डालेरी जमाचे सुगुणा पायकान कशरान मशरान होता तर जी बोल संत ते
1: ڈیرے بدر باز محمد صاحب خوشحال رہتا ہوں اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل داؤس رہو باز محمد صاحب چبوتے بروا کے کالکٹو ڈیرے زیادہ بدر کو

आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिंस दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा शफाफ बेबी।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

जी ग्रामीण उर्दू को तस्वीर रेडियो अमन एफएम 86.4 बटा ग्राम प्रोग्राम जमदी 4 के कॉस्मेटिक स्क्रीन पे तवन सरा तस्दी ओले सुन तुर दोले सुबह जो पूरी पर रेडियो अमन एफएम 86.4 बटा ग्राम बने और प्रोग्राम की तासुम 0997310400 टेलीफोन कॉल छे जरूर मुक्त मैसेज कर दे हुई दी कुर्बानी हवाले सर मुक्त नजम या नात वगैरह प्ले के नगुरु चुम सर सदा सिस्टे को निष्ठी जी

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: दरमान होम्योपैथिक सेंटर, जेल मोड़, बटग्राम, पकम के चिबस्तासो दहर ना इलाज मरज, इलाज डेर पर तसल्ली सरा कवलेशी, यानि शुगर, ब्लड प्रेशर, खूनी औबादी बवासीर, अरकुल निसा, बे औलादी, दनारी नौ जनानौ पटे मस

0: डोसा कोला कोल्ड ड्रिंक और स्वीट सामान हम पर होल सेल रेट तला सके। प्रोप्राइटर कारी अब्दुल्ला रबते नंबर दे 0342-098-1857 और बल नंबर दे 0309-5029-246। कप शप पे नुम्याद साते डबाई सुर दे और कार्ये स्पिन दे कप शप पे।
1: तरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम पकम खिच बस्तासो दहर न इलाज मरज इलाज डेर पतसल्ले सरा कवलेशी यानी शुगर ब्लड प्रेशर खूनी और बादी बवासीर अरकुल निसा बे औलादी दनारीनाओ जनानाओ पटे मसले दमला दर्द दमला परक और हडू की वहर औड़े दल दुनो रगुन बंदे दल दमेदे मसले फालज जड़े विख्तगोर से दल या पमख बंदे विख्तरा खतल नूर यौशमेर मसले डेटोलो मरजुन इलाज पदरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटाग्राम के डेर पतसल्ले सरा कवलेशी कचरता स्टासुमान तास किसम मसलवी लकद उमर सरसम नगर जेदल दखपो लासुनो कमजोरतिया दस्तरगु मसले पगुनो द्रने दल पोज के वह के दल या नोर से कमजोरतिया वी नासु खपल माशुमान दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटाग्राम तारा वस्तले से दरमान होम्योपैथिक सेंटर टोल हफ्ता कोला चिपके पे हवर दुआ मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टरान मौजूद हुई दरमान होम्योपैथिक सेंटर ता डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल से लपे हवरा तशरीफ रवड़ी द हफ्ते रुम्बई सलोर रजी पीर मंगल बुध जुमरात यानी सलोरमा पिंजमा शपगमा औजारत द सहर अतोना माजीगर सलोर बजो पोरी मौजूद हुई दगशान द हफ्ते आखिरी द्रिव रजी जुमा हफ्ता और इतवार द पेहावर बल काबिल डॉक्टर डॉक्टर नजमुल हसन से द सहर अतोना माजीगर तरसलोर बजू पूरी मौजूद हुई दोनों मालूमात दपारा फदे नंबर राबिता कवले शई 0331-47-48-317 0331-47-48-317 पतयार साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बटग्राम।
2: यो जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे पर चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा पद्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरीफ प्रोड़े से द मजीद मालूमात द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े
3: 0311-84-33-878। ग्रानो अवरिदुन को तसो आवाज अवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

0: Radio Aman Network, News and Information Station.
1: Radio Aman Network,
2: Pegham Aman Hai,
3: Pyar Ki Ek Duniya Lekar,
4: Mohabbat Se Samet Kar.
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

योर जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे पर चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा पर द्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरी प्रोड़े से द मजीद मालूमात द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े 0311 84